दिल कैसे नजरअंदाज कर दे उस एहसास को जो तुमने हमें दिया है। बेइंतहा खुशी देकर भी तुमने हमारा चैन

0: मगर क्यों?
1: शादी तो बर्बादी है।
0: क्या कहती हो?
1: हो जाती आजादी है।
0: नहीं नहीं
1: बाय बाय।
0: सुनो तो, सुनो तो, सुनो तो।

अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां हैं, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश 15 फ्रागे फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो, स्टूडियो ईमेल नार info@ujala.nl info@ujala.nl 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

उजाला रेडियो का प्रोग्राम में और मृत्यु समाचार को आप सुनिए। अम्स्टर्डम से परिवार भोला बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए शनिचर को 87 साल के आयु में ज़ेफ़रन तख्तख यार और पत्नी श्रीमती बेत्सी भोला का पति लड़कन एरविन सुदेश मीला और सुचित्र के पिता रोसिला नॉर्मा स्टेफन और केनेथ के ससुर, सात लड़कन के नाना और आजा और चार लड़कन के परनाना और पर आजा अम्स्टर्डम ज़ुइटोस वोन ग्रुप आनंद ज्योति का रहने वाला श्रीमान आंद्रे भोला के मृत्यु अम्स्टर्डम में हो गई है। पारामारिबो में कॉर्नेलिया स्ट्रैट का रहने वाला था। अम्स्टर्डम से परिवार लड़कन भोला बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए शनिचर को 87 साल की आयु में ज़ेफ़रन तख्तख यार और पत्नी श्रीमती बेत्सी भोला का पति लड़कन एरविन सुदेश मीला और सुचित्रा के पिता रोसिला नॉर्मा स्टेफन और केनेथ के ससुर, सात लड़कन के नाना और आजा और चार लड़कन के परनाना और पर आजा अम्स्टर्डम ज़ुइटोस वोन ग्रुप आनंद ज्योति का रहने वाला श्रीमान आंद्रे भोला की मृत्यु अम्स्टर्डम में हो गई है। पहले पारामारिबो कॉर्नेलिया स्ट्रैट का रहने वाला था। अर्थी से विदाई लेने के मौका है आने वाले शुक्रवार के रात में 7:15 से 7:15 तक। फ्रेडाखाफन फन क्वर्ट ओवर 7 tot क्वर्ट ओवर 8 वेस्खाड़े क्रिमेटोरियम ओक मेरवेक 275 अम्स्टर्डम ओस्टडॉर्फ में। और अर्थी के दाह क्रिया आने वाले शनिचर के दिन में 1 से जातर दखास्तांद 1 किए जाएंगे वेस्खाड़े क्रिमेटोरियम ओक मेरवेक 275 अम्स्टर्डम ओस्टडॉर्फ में। सुनने वालों से निवेदन है सूचना को और आगे तक पहुंचा देने के लिए उजाला रेडियो समस्त परिवार भोला के दुख में शामिल।

उजाला रेडियो है, यहाँ से हम अपना हफ्तावार प्रोग्राम सबरंग आगाज करते हैं जो अमस्तदम स्टूडियो से नशर किया जाता है। हरे सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम और नमस्कार, मैं हूँ आपका हमसफर निशा। प्रोग्राम सबरंग में आपको एक के बाद एक सुरीले नगमे सुनवाएंगे। आप इत्मीनान से खूबसूरत एहसासों में प्रोग्राम से लुत्फ उठाइए। दुआए प्रार्थनाएं वो फूल है जो जिंदगी की परेशानी में आसानी और कामयाबी की खुशबू बिखेरती है। वही चीज़ें ऐसी है जिसमें किसी का कुछ नहीं जाता। मुस्कुराहट और दुआ, इन्हें हमेशा तकसीम कीजिए। खुदा आपको सेहत, तंदुरुस्ती, ढेरों खुशियाँ, कामयाबियाँ और लंबी जिंदगी नसीब करे। नूरे खुदा तू कहाँ छुपा है हमें ये बता।

कलाम पेश था गाने वाले थे अतनान सामी और श्रेया घोषाल। भजन सुनवाते हैं मुकेश की आवाज में, तर्स है राम।

प्रोग्राम की शुरुआत में पेश था मजहबी और भक्ति गायन, मुद्दत हुई के आपने देखा नहीं हमें, मुद्दत के बाद आपसे देखा ना जाएगा, एक मुद्दत से मैसर ही नहीं दिल को वो लफ्ज जिसको करार कहते हैं, मुद्दत हुई है यार को मेहमान किए हुए।

डट हुई है यार को मेहमान किए हुए। इकबाल बानू की बुलंद आवाज में पेश थी ये गजल, कलाम था शायर मिर्जा गालिब का। ना जख्म भरे ना शाम सहारा हुई, ना तुम मिले ना ये मोहब्बत दोबारा हुई, दर्द के फूल भी खिलते हैं बिखर जाते हैं।

जगजीत सिंह की आवाज और शायर जावेद अख्तर का कलाम में पेश थी ये गजल। वो जो गुजरे थे तेरी साथ कभी, वो जो गुजरे थे तेरी साथ कभी, वही लम्हे मेरी यादों में बसी है, चंद लम्हे तेरी महफिल में गुजार आया हूँ।

उसकी गली में फिर मुझे एक बार ले चलो, मुन्नी बेगम से पेश थी ये गजल। खूबसूरत अंदाज में हमने आपको गजलें सुनवाए, उसे जिसे गजलें सुनने में शौक रखते हैं। अब लीजिए पेश है हल्के हल्के मीठी धुनों में एक के बाद एक सदाबहार नगमे।

अनमोल नगमा पेश था, गायिका थी गीता दत्त, संगीत देने वाले थे संगीतकार रोशन और गीतकार प्रेम धवन का गीत रचना था। वो रातें कैफ, कैफ मतलब प्लसीर में डूबी, वो तेरी प्यार की बातें, निकल पड़ते हैं आंसू जब कभी तुम्हें याद करते हैं, तुम जब भी याद आओगे ये दिल भर आएगा, ये आंख छलक जाएगा।

दुनिया में एहतराम करती है, स्वागत करती है। अब यहाँ से हम फिल्मी दुनिया पेश करेंगे। कई हफ्तों से हमने महान फनकार देवानंद के बारे में बयां कर रहे हैं, जो अपने दौर में अवाम की दिलों पर छा गया था। जब भी वो सिनेमा की पर्दे पर नजर आते थे तो दर्शकों की तालियों से तहलका मच जाता था। हमने पर्दे के कोने जरा सा उठाकर जब झांक कर देखा तो अदाकार देवानंद और उनकी निजी जिंदगी से अलग था, और यही हमने कोशिश किया आपके साथ बांटने को। कैसी थी उनकी निजी जिंदगी? पिछले प्रोग्राम में हमने उनकी कई फिल्मों के बारे में जिक्र किया जो मकबूल हुआ और शोहरत हासिल किया। फिल्म हम दोनों, जिस फिल्म में देवानंद डबल रोल किया था, इसी फिल्म हम दोनों में से हम आपको वो भजन सुनाते हैं जिसे हम रोजाना भी सुने तो भी जी नहीं भरता। फिर कहानी हम आगे बढ़ाएंगे।

फिल्म हम दोनों का गीत था, न्यू कितन्स प्रोडक्शन और संगीतकार जयदेव ने संगीत से सजाए थे। देवनंद ने जब से अदाकारी शुरू किया तब से लेकर नेहतिन एन सस्तक तक कई तरह के किरदार बाखूबी से निभाए, लेकिन फिल्म जब प्यार किसी से होता है कि किरदार में वो लाजवाब थे। देव की कला का असली जौहर भरपूर निखरा इस फिल्म में। साथ में थी खूबसूरत जोशीला अदाकारा आशा पारेख। इस फिल्म का प्रोड्यूसर थे नासिर हुसैन। फिल्म जब प्यार किसी से होता है का एक मंजर कई फिल्मों में दोहराया गया। इस फिल्म में आशा परेख रेलगाड़ी में सफर कर रही है और खिड़की से बाहर फिजा से लुत्फ उठा रही है। देवनंद मोटर कार में ट्रेन के साथ साथ गाड़ी चलाते हैं ये नगमा गाते हुए।

देवनन का ये अदा से पेशकश शक्ति सामंत मुतासर हुआ और इस मौजू को फिल्म आराधना में दोहराए थे, जिस फिल्म में राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर ने काम किए थे। इसी मंजर को तीसरी बार दिखाई गई थी, जिसमें शर्मिला टैगोर का बेटा सैफ अली खान थे और ये शूटिंग दार्जिलिंग में हुआ था। पर हम बात कर रही है देवनंद और आशा परेख की फिल्म जब प्यार किसी से होता है की। इस फिल्म की शूटिंग पंजाब में हुआ था। आशा परेख ने कहा कि एक दिन शूटिंग के दौरान पंजाब की लड़कियों को जब पता चला कि देवनंद की शूटिंग वहां हो रहा है, तो तकरीबन 200 लड़कियां उनसे मिलने के लिए स्टूडियो में हाजिर हुई थी। सिर्फ देव को एक नजर देखने, उनके साथ तस्वीर खींचने और दस्तखत लेने को। आशा परेख ने यह भी कहा कि इतनी तादाद में लड़कियों को देखकर देव घबराए नहीं, सभी लड़कियों की ख्वाहिशें पूरी किए और लड़कियों की ये बर्ताव से वो खुद हैरत में पड़ गई थी। बाद में फिर देव ने शूटिंग में मसरूफ हो गया और लड़कियों के बारे में एक बार भी जिक्र नहीं किया। आशा परेख ने कहा, देवनंद की अच्छी बर्ताव देखकर उनके लिए इज्जत और बढ़ गई थी। फिल्म जब प्यार किसी से होता है पर्दे पर दिखाई गई तो तहलका मचा दिया था, दर्शकों की तालियों और खास करके नासिर हुसैन की पेशकश से। देवनंद और आशा परेख की जोड़ी आवाम बहुत पसंद किया। प्रोड्यूसर नासिर हुसैन को एहसास हुआ कि आवाम को अब किस तरह की फिल्में पसंद हैं। इसलिए उसने तय किया इन दोनों को फिल्म तीसरी मंजिल में दोबारा अदाकारी करने को। पर नासिर हुसैन इसके बारे में देवनंद से जिक्र नहीं किया और ऐलान कर दिया था कि फिल्म तीसरी मंजिल में फिर से मशहूर जोड़ी देवनंद और आशा परेख काम करेगी। बातें हम आगे बढ़ाएंगे एक गीत के बाद। नेव कतन की फिल्म हाउस नंबर 44 का गीत है। इस फिल्म में देवनंद कल्पना कार्तिक के साथ काम किया था।

न्यू कटन्स प्रोडक्शन हाउस नंबर 44 का गीत था, जिस फिल्म में देवानंद कल्पना कार्तिक के साथ अदाकारी किया था। इस गीत से पहले आपने सुना कि प्रोड्यूसर नासिर हुसैन ऐलान किया था कि देवानंद और आशा परेख दोबारा एक साथ फिल्म तीसरी मंजिल में काम करेगी। देव इस बात से अंजाम था, उसने प्रोड्यूसर नासिर हुसैन से कहा, सर मैं आपसे इस मौजू पर बातें करना चाहता हूँ। दोनों में इस मौजू पर जब बहस हुआ तो देवानंद प्रोड्यूसर नासिर हुसैन से सहमत नहीं था और फिल्म तीसरी मंजिल में काम करने से इनकार कर दिया। वैसे तो नासिर हुसैन ने देव की इनकारी से मायूस हुआ था, लेकिन उसी दौरान शमी कपूर की अदायगी फिल्म दिल देख के देखो में आवाम की जुबान पर सिर्फ शमी कपूर का चर्चा था, तो इसी तरह शमी कपूर को दोबारा मौका मिला फिल्म तीसरी मंजिल में आशा परेख के साथ काम करने को। फिल्म तीसरी मंजिल शमी कपूर और आशा परेख के साथ आवाम पसंद किया, फिर भी पेशकश नासिर हुसैन की जहन में देवानंद था। फिल्म तीसरी मंजिल के बाद पेशकश नासिर हुसैन ने फिल्म तुमसा नहीं देखा का स्क्रिप्ट तैयार कर रहा था। एक बार फिर नासिर हुसैन ने देवानंद से इस फिल्म में काम करने को जिक्र किया। वो शिद्दत से चाहते थे देवानंद को इस फिल्म में, लेकिन देव ने फिर से इनकार कर दिया। देवानंद का कहना था कि वो अपने रफ्तार में काम करते हैं, दूसरे प्रोड्यूसर की दबाव में नहीं। उसी दौरान नेहतिन एनल सेस्तक और नेहतिन त्वेन सेस्तक की दरमियान देवानंद की कई फिल्में रिलीज हुआ। फिल्म माया अदकारा माला सिन्हा के साथ, फिल्म 16 साल और बात एक रात की जिसमें थी वहीदा रहमान, और असली नकली साधना के साथ। आइए सुने फिल्म बात एक रात की में से ये मशहूर गीत।

मिल गया। फिल्म बात एक रात की नगमा आपने अभी सुना, ये नेहतिन तुयें सस्तख में रिलीज हुआ, जिसमें देवानंद के साथ ही वहीदा रहमान। इस गीत से पहले आपने सुना कि देवानंद ने प्रोड्यूसर नासिर हुसैन की फिल्म तुमसा नहीं देखा में काम करने से इनकार कर दिया था। और आप शायद जानते होंगे कि इस फिल्म में थे शमी कपूर और अमिता। फिल्म तेरे घर के सामने में थी देवानंद के साथ अदाकारा नूतन। इस फिल्म की कहानी ऐसी है कि देव को नूतन से इश्क हो जाता है। नूतन का पता उसे मालूम नहीं है, इतना सिर्फ कि वो शिमला में रहती है। उसके पता जाने के लिए देव दिल्ली से शिमला तक मोटरसाइकिल पर जाता है और शिमला में दर बदर ये गीत गाता है।

फिल्म तेरे घर के सामने का गीत था। इस फिल्म में कई खूबसूरत गाने हैं, पर वो गीत दिल का भंवर करे पुकार, प्यार का राग सुनो, ऐसा लगता है कि ये मंजर दिल्ली के कुतुब मीनार की सीढ़ियों पर फिल्माया गया है, पर ऐसा नहीं है। बाहर से कुतुब मीनार तो असली है, लेकिन अंदर की सीढ़ियां बॉम्बे में महबूब स्टूडियो में शूट किया गया। कुतुब मीनार की सीढ़ियां महबूब स्टूडियो में इतना खूबी से नकल किया गया कि लगता था कि दिल्ली के कुतुब मीनार की सीढ़ियां हैं। हम वो गीत आपको सुनाते हैं, आइए सुने।

फिल्म तेरे घर के सामने का गीत था। अवाम इस फिल्म को पसंद किया। इसी दौरान देवनंद और विजय आनंद फिल्म गाइड के स्क्रिप्ट तैयार कर रहे थे। प्रोड्यूसर एक फिल्म की कहानी लिखने से पहले ज्यादा से ज्यादा कहानियां किताबों को पढ़कर मुतासर होते हैं, इंस्पिरेट होते हैं। एक दिन किसी ने देवनंद से कहा, आप गाइड पर कहानी लिखने का फैसला किया है, लेकिन स्क्रिप्ट शुरू करने से पहले लेखक एरका नारायण की किताब जरूर पढ़ना। कहानी अच्छी है। देव नारायण की किताब पढ़ा, उसे भी कहानी अच्छा लगा। उसी दौरान अमेरिका से जाने माने लेखक पर्ल एस बुक इंडिया आई हुई थी। देवनंद के बारे में, उनके कला के बारे में सुनी थी और देव को अपनी फिल्म के लिए हॉलीवुड ले जाना चाहती थी। इस बात से देव को अपने आप पर फख्र महसूस हुआ। इस मौजू पर पर्ल एस बुक और देव से लंबे चौड़े बातें हुई, पर हॉलीवुड जाने के लिए देवानंद ने इनकार कर दिया। उनका कहना था कि इंडिया में सभी उसे जानते हैं, इज्जत करते हैं, शोहरत की बुलंदियों पर है। हॉलीवुड में वो फिल्म में काम करने के बाद भी अनजान रहता। उसी दौरान देव फिल्म हम दोनों को लेकर बर्लिन फिल्म फेस्टिवल में हिस्सा लिया। बर्लिन में उसे इस बार पर्ल एस बुक की हिदायतकार से मुलाकात हुआ। मेल मिलाप होने के बाद देव ने कहा, हमने लेखक एरका नारायण की किताब द गाइड पढ़ा है, इस कहानी को लेकर फिल्म बनाएंगे तो जरूर कामयाब होगा। पर्ल एस बुक के हिदायतकार द गाइड की कहानी से मुतासर हुआ। अमेरिका वापस पहुंचते ही देव को अमेरिका जाने के लिए दावत मिला द गाइड की कहानी के बारे में और जानने को। बात यह थी कि पर्ल एस बुक द गाइड हॉलीवुड में बनाने का फैसला किया और इसी कहानी को देवनंद इंडिया में प्रोड्यूस करना चाहते थे। लेकिन उससे पहले लेखक एस का नारायण से इजाजत लेना था द गाइड की कहानी फिल्माने को। देव इस कहानी को खरीदना चाहते थे। आगे क्या होगा, ये कहानी अमेरिका में बनेगा या नहीं, अगले हफ्ते कहानी हम आगे बढ़ाएंगे।

फिल्मी दुनिया आपने अभी सुना, जिसमें हमने महान फनकार देवानंद के बारे में बयां किया। उजाला रेडियो का प्रोग्राम सबरंग आप सुन रहे हैं, जो अम्स्टर्डम स्टूडियो से नशीर किया जाता है। दिल की बात दिल में रहने दो, किसी से क्या कहना, क्या समझेगा जमाना। मोहब्बत मोहब्बत ऐसी धड़कन है जो समझाई नहीं जाती।

फिल्म अनारकली में से ये नखमा लिया है से रामचंद्र की मौसिकी थी और हसरत जयपुरी का लिखा तर्ज था। दिल ही दिल में हम उनसे प्यार करते हैं, चुपचाप हम उनकी मोहब्बत का इंतजार करते हैं, जब से उसे देखा दिल दे बैठे।

एवर ग्रीन सॉन्ग पेश था, गाने वाले थे मुकेश जी, संगीत से सवारे थे नौशाद अली और मजरू सुल्तानपुरी का लिखा तर्ज था। खूबसूरत अंदाज में पेश है अगला गीत।

फिल्म गुमराह में से ये गीत पेश था, साज से सजाए थे मौसिकार रवि। अब आइए सुने मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में ये दो गाना।

रात और दिन के देवे है तोर साथ, के तोर साथ सूते है, के तोर साथ जागे है, केकर साथ तू ओतो में घूमे है, और केकर साथ तोर घर के सब काम होवे है। उजाला रेडियो के साथ तो हाँ, हमेशा सुख में और दुख में उजाला रेडियो तू

उजाला रेडियो का प्रोग्राम सबरंग आप सुन रहे हैं। एक बार फिर आप सभी सुनने वालों को आदाब अर्श और नमस्कार। गीत जो अब आप सुनेंगे जुगल गीत है। आवाजें किसकी है आप खुद पहचान जाओगे। तो लीजिए पेश है, और हाँ, आप गायक की आवाज पर जरा सा ध्यान देना।

मैं यहाँ तू वहाँ, जिंदगी है कहाँ। ये जानी पहचानी आवाज श्री अमिताभ बच्चन का है और साथ में थी अलका याग्निक। उनका गाए हुए एक गीत जो मशहूर हुआ वो थी फिल्म सिलसिला का गीत रंग बरसे भीगी चुनरिया। फिल्म बागबान में आदेश श्रीवास्तव संगीत दिया था और समीर ने तर्श को लिखे थे। जिंदगी में कोई गम न हो, कोई आंख कभी नम न हो, कोई दिल किसी का तोड़े ना, कोई साथ किसी का छोड़े ना, बस प्यार की आंधियां बहते रहे। काश की दुनिया ऐसे ही हो, कैसे हो, झूमता मुस्कुराता चल, प्यार में गुनगुनाता चल।

मोहब्बत भरे अंदाज में पेश था ये नगमा, मदन मोहन का संगीत रचना, गीतकार थे मजरू सुल्तानपुरी। इसी रोमानी अंदाज में आइए सुने ये नगमा।

फिल्म तीन देवियां में से ये नगमा पेश था। संगीत से सवारे थे सचिन देव बर्मन। अब आइए सुने लता मंगेशकर से अगला गीत।

सुनहरी दौर का सदाबहार नगमा पेश था, गीतकार थे मजरू सुल्तानपुरी। अब आइए सुने किशोर कुमार से अगला गीत।

फिल्म बेवफा से वफा का गीत पेश था। गाने वाले थे लता मंगेशकर। अब आइए सुने सुरेश वाडकर और आशा भोसले से ये दो गाना।

फिल्म सवेरे वाली गाड़ी में से ये गीत पेश था। गाने वाले थे सुरेश वरकर और आशा भोसले। संगीत से सवार थे राहुल देव बर्मन। दर्शक लिखे थे मजरू सुल्तानपुरी।

अमर गीत पेश था रफी साहब की आवाज में। प्रोग्राम में आखिरी गीत आइए सुने, गाने वाले हैं महेंद्र कपूर और लता मंगेशकर।

खुशी के साथ गमी है, पैदाइश के साथ मौत। उजाला रेडियो का प्रोग्राम में मृत्यु समाचार आप सुनिए। आम्स्टर्डम से समस्त परिवार हीरालाल बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए बीफे को 87 साल के आयु में जीवन तख्त यार और पत्नी श्रीमती मरी हीरालाल उदयराम का पति लड़कन जूलियन और परिवार, ग्लेन और परिवार, नलिनी और परिवार, इरेन और परिवार, हैंक और परिवार, जिम और परिवार, शारदा और परिवार, जॉय और परिवार, योसेफ और परिवार, जेरी और परिवार, शर्मिला और परिवार और स्वर्गीय जॉन और परिवार के पिता आम्स्टर्डम का रहने वाला श्रीमान योसेफ चंद्रभान हीरालाल की मृत्यु आम्स्टर्डम में हो गई है। भान के नाम से लोग पहचानते और पुकारते थे। सूरीनाम में पहले सिदोरे जो वैखदेसा लीली दौरप का रहने वाला था। आम्स्टर्डम से समस्त परिवार हीरालाल बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए बीफे को 87 साल की आयु में जीवन तख्त यार और पत्नी श्रीमती मारी हीरालाल उदयराम का पति लड़कन जूलियन और परिवार, ग्लेन और परिवार, नलिनी और परिवार, इरेन और परिवार, हैंक और परिवार, जिम और परिवार, शारदा और परिवार, जॉय और परिवार, योसेफ और परिवार, जेरी और परिवार, शर्मिला और परिवार और स्वर्गीय जॉन और परिवार के पिता आम्स्टर्डम का रहने वाला श्रीमान योसेफ चंद्रभान हीरालाल के मृत्यु आम्स्टर्डम में हो गई है। इन्हें लोग भान के नाम से पहचानते और पुकारते थे। सूरीनाम में पहले लेली दौरप देसा सीधो रेजो वह का रहने वाला था। अर्थी से विदाई लेने की मौका है आने वाले बुध के रात में 7 बजे से 8 बजे तक वुंसदाख आफंत फन जी फन तौत अख्तूर ओला जोयत के मुर्दालय फ्रेतरूस के स्रात 91 आम्स्टर्डम जोयत में और अर्थी के दाह क्रिया आने वाले बीफे के दिन में 4 बजे दोंदर दखांस्तांद फीर उर किए जाएंगे। वैसखार्द क्रिमाटोरियम ओक मेरवैग 275 आम्स्टर्डम उस दौरप में निवास स्थान पर बैठक नहीं किए जाते हैं। और जानकारी के लिए तार का नंबर है 06-28-41-91-71. सुनने वालों से निवेदन है सूचना को और आगे तक पहुंचा देने के लिए उजाला रेडियो समस्त परिवार हीरालाल के दुख में शामिल है।

और मृत्यु समाचार प्रोग्राम में आप सुनिए, हौतन से परिवार महादेव मिसिर बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए बुध को 72 साल के आयु में त्वेयन जीवन तखियार औत पत्नी एल्फी का पति लड़कन किशन विकास अमरेश और करिश्मा महादेव मिसिर के पिता मीरांदा लिंसे शकीता और राम के ससुर जायदा जनायरो रोशन और नीलन के आजा हौतन का रहने वाला श्रीमान चंद्रदत्त महादेव मिसिर के मृत्यु निवखेन के सेंट एंटोनियस हॉस्पिटल में हो गई है। हौतन से परिवार महादेव मिसिर बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए बीफे को 72 साल के आयु में त्वेयन जीवन तखियार औत पत्नी एल्फी का पति लड़कन किशन विकास अमरेश और करिश्मा के पिता मीरांदा लिंसे शकीता और राम के ससुर जायदा जनायरो रोशन और नीलन के आजा हौतन का रहने वाला श्रीमान चंद्रदत्त महादेव मिसिर के मृत्यु निवखेन के सेंट एंटोनियस चिकन हाउस में हो गई है। अर्थी से विदाई लेने के मौका है कल बुध के रात में 6 बजे से 7 बजे तक एटवर्ड सेंट्रम डालवेक के मुर्दालय फ्लोरिडा ड्रीफ नंबर 7 उत्रेख्त ओवरफेख्त में और अर्थी के दाह क्रिया आने वाले शुक्रवार दिन में 4 बजे से फ्रेदखांस्तांद फिर किए जाएंगे डालवेक क्रीमाटोरियम फ्लोरिडा ड्रीफ नंबर 7 उत्रेख्त ओवरफेख्त में। सुनने वालों से निवेदन है सूचना को और आगे तक पहुंचा देने के लिए उजाला रेडियो के साथ आखिरी सफर ऐतफार्थ फुरजोरखिंग समस्त परिवार महादेव मिसिर के दुख में शामिल है।

और मृत्यु समाचार प्रोग्राम में आप सुनिए, अम्स्टरडम से लड़कन बंसी बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए इतवार को 85 साल के आयु में फैफन तख्तख यार और स्वर्गीय पति श्री हरिदेव बंसी की विधवा लड़कन सीता शिवराज, स्वर्गीय उर्मिला देवी मोहाबू, इंदिरा कुशल, मीना शकौरी, स्वर्गीय अशोक बंसी और श्रीमान सुनील बंसी के मां, दो पतों और दो दामाद और दो स्वर्गीय दामाद के सास, 14 लड़कन और एक स्वर्गीय लड़का के नानी और आजी और 15 लड़कन के परनानी और पर आजी। अम्स्टरडम जोइटोस की रहने वाली विधवा जयवंती बंसी रामफल के मृत्यु अम्स्टरडम जोइटोस में हो गई है। परामारीबो में पहले मिंदरवेह के निवासी थी। अम्स्टरडम से लड़कन बंसी और परिवार बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते इतवार को 85 साल की आयु में फैफन तख्तख यार और स्वर्गीय पति श्री हरिदेव बंसी के विधवा लड़कन सीता शिवराज, स्वर्गीय उर्मिला देवी मोहाबू, इंदिरा कुशल, मीना शकौरी, स्वर्गीय अशोक बंसी और श्रीमान सुनील बंसी के मां, दो पतों, दो दामाद और दो स्वर्गीय दामाद के सास, 14 लड़कन और एक स्वर्गीय लड़का के नानी और आजी और 15 लड़कन के परनानी और पर आजी। अम्स्टरडम जोइटोस की रहने वाली विधवा जयवंती बंसी रामफल की मृत्यु अम्स्टरडम में हो गई है। पहले पारामारिबो मिंदरवेह के निवासी जो थी। अर्थी से विदाई आप ले सकेंगे आने वाले बीफे के रात में 7 बजे से 8 बजे तक donderdagaanstaande van 7 tot 8 uur. Uitvaartcentrum Westgaarde ke Moerdalei. Ook middenweg 275 Amsterdam Oostdorp me. Aur arthi ke dahakriya. Aane wale shukrawar din me 12 baje. Vrijdagaanstaande 12 uur kie jayenge Westgaarde Crematorium. Ook middenweg 275 Amsterdam Oostdorp me. सूचना है कि निवास स्थान पर बैठक नहीं किए जाते हैं। सुनने वालों से निवेदन है सूचना को और आगे तक पहुंचा देने के लिए उजाला रेडियो के साथ आखिरी सफर एतफार्त फ्रजोरखिंग समस्त परिवार बंसी और परिवार रामफल के दुख में शामिल है।

और सुनने वालों, यहीं से शोक प्रोग्राम यादें आप सुनेंगे। गीत इसमें होंगे किशोर कुमार की आवाज में और ये पेश है हौतन के रहने वाले परिवार महादेव मिसीर। पत्नी श्रीमती अल्फी के तरफ से स्वर्गीय पति लड़कन किशन, विकास, अमरेश और करिश्मा, महादेव मिसीर के तरफ से स्वर्गीय पिता मिरांडा, लिंसे, शकिता और राम के तरफ से स्वर्गीय ससुर जायदा, जनायरो रोशन और नीलन के तरफ से स्वर्गीय आजा, स्वर्गीय श्री चंद्र दत्त महादेव मिसीर की याद में 72 साल की आयु में इनकर मृत्यु जो बीते हुए बीफे को हो गई है, तो इन्हीं की याद में ये अगला गीत प्रोग्राम में पेश है।

0: कोई सहारा ना रहा। किशोर कुमार जी की आवाज में गीत को आप सुने और ये पेश की गई है हौतन के रहने वाले परिवार महादेव मिसिर, श्रीमती पत्नी कहिए श्रीमती अल्फी के तरफ से स्वर्गीय पति, लड़कन किशन विकास अमरेश और करिश्मा की तरफ से स्वर्गीय पिता, मिरांडा लिंसे शकीता और राम के तरफ से स्वर्गीय ससुर, जायदा जनायरो रोशन और नीलन के तरफ से स्वर्गीय आजा, स्वर्गीय श्री चंद्रदत्त महादेव मिसिर की याद में 72 साल की आयु में मृत्यु हो गई है इनकर। तो इन्हीं की याद में गीत पेश की गई है और यहीं तक आप सुने आज का प्रोग्राम या सोख प्रोग्राम यादें उजाला रेडियो है ये।
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment 40 kilometer file op de Nederlandse wegen, maar we beginnen met een wegafsluiting, de A1 richting Amersfoort. Die is dicht tussen Apeldoorn-Zuid en Kootwijk door een vrachtauto met pech. Het verkeer richting Apeldoorn kan het beste omrijden via Arnhem over de A50, de A12 en de A30. Dan de A27 Utrecht-Gorkum tussen knooppunt Rijnsweerd en Hagestein, 45 minuten vertraging. Er staan twee vrachtwagens met pech en daarom zijn er twee rijstroken dicht. De vertraging 45 minuten. Dan nog de N361 Anjem richting Groningen tussen de veerdienst naar Schiermonnikoog en afrit Zoutkamp doe je er 25 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.

0: दिन का।
1: ये है उजाला रेडियो का वही प्रोग्राम कॉफी चाय मिल्क शो जो शुरू किया जा रहा है आपके वास्ते। हम इंतजार करें अभी थोड़ी देर में आनंद चंद्रिका सिंह का इंतजार कर रहे हैं। एंड दान बिगिन वी नेचुरली विद gezellige, luchtige onderwerpen आज का समाचार आने वाले दिनों के बारे में समाचार उजाला रेडियो पर जरूर आप सुनना। उजाला कॉफी चाय मिदक शो कुछ देर में शुरू हुआ क्योंकि अफसोस के साथ बहुत सारे मृत्यु समाचार थे। आज के रात्रि के समय 7 बजे फिर सुन लेना उजाला रेडियो के जरिए मृत्यु समाचार। और हम आज ये प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं इस गाना के साथ माइटी मुकेश के आवाज में। ये नाम हम आपको सुनाने को जा रहे हैं। माइटी मुकेश ये गाना गाए हैं इस फिल्म दीवार का फिल्म है फिल्म दीवार का नामा है धर्मेंद्रा और शर्मिला टैगोर धर्मेंद्रा एंड शर्मिला टैगोर इस फिल्म में काम किए हैं। और ये गनवा इतना मोई लगे हमें इतना मोई लगे तनी मोई से गनवा सुनिए ध्यान से सुनिए ये गनवा

उन दिनों के बातें, उन दिनों के उन जमाने के बातें जब हम खेलते थे, ये सब बातें भूलना नहीं चाहिए।

0: एगो गाड़ी के चूना अंधराव करे गड़िया भी तू ना चली मोई से तो
1: तू जाने अंधराव करे ना तू जानेगा महाजन लॉज देवे आदमी सच्चे सुनने वालों
0: एक डॉक्टर लॉ प्रोग्राम ना आएगा मैं यार
1: तू लो ज्ञान के बात सुन ले दिमाग से अरफारिस दस कुंडल यह वर रख पंप्राप्त हो लॉज तो के मार बतिया ये सब चीज बोल के ऊपर प्यार मोहब्बत प्यार मोहब्बत के बारे में तो के मार बतिया
0: या सुन ले पे गनवा हम शुरू कर ली थी कि गुजरा हुआ जमाना बचपन का है ना चाहे भूले के है
1: गुजरा हुआ जमाना
0: या
1: फिर नहीं आता वो गनवा तो
0: वो गनवा उससे पहले उससे पहले एक और गाना रहा फन माइक मुकेश
1: बचपन की मोहब्बत हो
0: ना मत दाफोर हाथी का नंबर फन मुकेश गुजरा हुआ जमाना बचपन हमने तू गनवा सुन ले कि ना सुन ले किसान तू आधा कहाँ से सुनी हुई है भाई दिनों
1: Je bent weggevallen.
0: Ja, maar hij bolit ook koptelefoon naartoe. Ik ben niet jaloers op je koptelefoon, maar je moet die koptelefoon van je wegdoen.
1: Wat is dat, hè, Jo?
0: Ja, ja.
1: Oké, we zijn er weer, hè?
0: Ja, we zijn er weer. We hebben een kabel.
1: Kink in de kabel, letterlijk. कभी कभी हो जाएगा यार ये तो एक knoop in je buik hebben hè trouwens
0: een knoop in je buik
1: तू जानेगा als je in je darmen of zo hè een knoopje hebt
0: ja
1: अरे letterlijk na jaar
0: nooit hè absoluut
1: निगादो मनेर महावीर
0: हम सोचे लग ली तो knoop in je buik कैसे हो सके चीज बा
1: अच्छा छोड़ दे बस लाना वो क्यों knoop flinders in je buik hebben
0: ja flinders oké dat kan dat heb ik
1: wel ja हो गई अच्छे जुआन
0: हाँ
1: कौन
0: कब है कैक या यू मुझे तो आनंद यू मुझे वाटे एवं वांट डूनो आई आफ टू फॉल यू वेग मैं नहीं
1: दैट बेन इक नहीं हो लॉयड
0: बेन यू दैट नहीं
1: हम नहीं तू क्या करेगा वहाँ पे तूर तार के तू रखेगा
0: ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना

0: गुजाले। गाना जो सुनिए तो के कौन चीज याद आवेगा?
1: गुजरा हुआ जमाना ना तो हाँ, बोलेगा
0: या
1: वेल हम नहीं ना अच्छा सुनना प्यार मोहब्बत में ऐसे हो गई गलोई
0: हाँ,
1: तो प्रेला लीव दे ओके बोले तो काल्फर लीव दे
0: या या या
1: तो हाँ? जवानी में जो हो गएगा छोटा तो रही है
0: yeah.
1: मैं तो हो कल फलीफ मस्किन ऑफ यू यूफ मस्किन ऑफ यू ब्यूर मैश मस्किन एक वे नहीं ऑफ ये फलीफ क्यों रहा कल माल तो क्या और अरफारिंग बाहर रह जान लॉट तू तो सब कोई को ऊपर फलीफ रहा हो जाएगा जे ही तू देखेगा असमर्थ वही बेन है बदन बहुत बहुत सीधा साधा आदमी तू बातें तो ये खेत इधर ही ना काम ये मैं तो उन्हें लीफ मैन
0: बहुत बहुत बहुत सुधा सुधा
1: जवानी में जो रह होवेगा छोटा तू रही है
0: या
1: मैं तो हो कल फलीफ मस्किन ऑफ यू यूफ मस्किन ऑफ यू ब्यूर मैश मस्किन एक वे नहीं ऑफ ये फलीफ क्यों रहा कल माल तो क्या और अरफारिंग बाहर जान लॉट तू तो सब कोई को ऊपर फली फ्राक हो जाएगा जे ही तू देखेगा असमर्थ वही बेन है बदन बहुत बहुत सीधा साधा आदमी तू बातें तो ये खेत इधर ही ना काम ये मैं तो उन्हें लीफ मैन
0: बहुत बहुत बहुत सुधा सुधा
1: तू कृति से अलग खफाल ना बातें तू खबर तू सब कोई के सेवा में तैयार
0: हम सब कोई के चाहिला हम सब कोई के चाहिला
1: अच्छा मत तू एक बेइन है बदन इसलो प्रॉमिस को क्लाक मिला हम लोग के चलो
0: आप कौन क्लाक मिला लेगा बाप रे बाप
1: हम एगो मफ्राउ पर हाउस बाय गो मेल हम लोग के
0: अच्छा
1: मा एक्ट एरंस्टर हो
0: एक ना एरंस्टर
1: है हम ना जब ओके नाम बोले ओके नाम बोले दन दन दखा हम हर बलेदे है
0: ओ ना ना नाम ना बोले
1: नहीं नहीं नहीं मा दी मफ्राउ हैव गेस्क्राइफ दैट ही आट से तो के नमा खासे के चलो
0: हमें नमा खासे के
1: ना बोले बहुत जोर हम लोग हासिला जैसे जैसे खीखल करीला जैसे हम लोग बेबी करीला जैसे
0: अरे
1: देखो औरत करीला
0: अरे अच्छा
1: हाय
0: अच्छा
1: दोस्तों okay. आज से ही प्रोग्राम एरंस तक बना कोई हम लोग उनका दी एन मफ्राउ दैट हैव गेस्ट कि हम लोग बहुत ज्यादा हंसी ला
0: बहुत बहुत हंसी
1: है अच्छा
0: अच्छा
1: अपना हंसी है
0: अपना हंस कोई
1: है मफ्राउ एफ सीरियस मफ्राउ तू इतना गुस्सा में लिखले मेल हुआ एक एक एक सौ तो अब सुख खाना ना बेच लीव दे इन योर लाइफ या

इस तरह से आपने सुने हैं उजाला रेडियो के जरिए पेश किया गया है श्याम दर्शन हमारी फिल्म देवर या दीवार, देवर मेरे ख्याल से है, आपने सुने हैं माइटी मुकेश की आवाज में।

द रॉकिंग एंड मोस्ट सेंसेशनल यू आर उजाला रेडियो का पैगाम आपके मध्य में प्रस्तुत किए जा रहे हैं स्टूडियो एम्स्टरडम से। हर एक को आपका खादिम शहीद गुलजार का नमस्कार और अस्सलाम वालेकुम। मिले जुले संगीत के साथ स्टूडियो में हाजिर हूँ, लेके सबसे पहला सिलेक्शन शोला जो भड़के दिल।

आर के श्रोताओं को खैर मकदम के साथ सबसे पहला सेलेक्शन हमारा प्रोग्राम में पेश की गई है शोला जो भड़के दिल मेरा धड़के दर्द जवानी का सताए बढ़ बढ़ के। सन 2016 का फिल्म एक अलबेला से। हमारे सुनने वालों आप हमें जहां से भी सुन रहे हैं आप सभी खुश रहे और सलामत रहे। अगर आप दुखित है बीमार या तो लाचार है तो आपके खुशी के वास्ते भगवान से प्रार्थना और अल्लाह से दुआ है आपके ताकत और तंदुरुस्ती के वास्ते।

कितनी हंसी ये मुलाकातें हैं, उनसे भी प्यारी तेरी बातें हैं। कुछ इस तरह सा सिलेक्शन हम सफर, आए मेरे हम सफर, हमारे सभी श्रोताओं के वास्ते आपकी खिदमत में, आपके दिल बहलाने के लिए हम कुछ मिले जुले संगीत मिक्स मैक्स सॉन्ग्स पेश कर रहे हैं। और अब हो जाए एक गोल्डन ओल्डी सिलेक्शन, सुरों का बादशाह मोहम्मद रफी साहब की आवाज़ के। पत्ता नोट करो हमारा, हमसे आ मिलना दोबारा।

का पाउडर मुंह पे मारे और मुस्काए, प्रेम नगर की परियां अपना असली रूप छुपाए। दो आने का पाउडर मुंह पे मारे और मुस्काए, जो देखे इनको वो फटका खा जाए बेचारा। ओ मैं सब अरे पत्ता नट।

सिलेक्शन पेश की गई है उमर वाजिद हुसैन की आवाज़ में के आंसू का हमारा गम ना करो, बहता है तो बहने दो, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, एहसान तेरा होगा मुझ पर, दिल चाहता है तो कहने दो मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है।

अरे जाने मन तुझसे करीब आ रहा हूँ, धीरे धीरे से तेरा हुआ, हौले हौले से तेरा हुआ। सिलेक्शन पेश की गई है आतिफ असलम की आवाज। फिल्म का नाम लव यात्री। फोन का नंबर स्टूडियो में है, रेडियो के क्षेत्र पर हर काम काज के वास यानी एडमिनिस्ट्रेशन पर है 02-409-0807 02-409-0807 पर आप डायल कर सकते हैं रेडियो के क्षेत्र पर हर एक कामकाज के वास्ते। आज का प्रोग्राम में हम कुछ मिले जुले संगीत में लोकल सेलेक्शंस और फिल्मी नगमे आपको सुना रहे हैं। आप मुलाहिजा फरमाइए इस सेलेक्शन से दी इंडियन टेम्पटेशंस के साथ पर। पुराना गायक विम डमरी की आवाज कि मैंने तुझसे किया है प्यार और मेरी महबूबा ये दिल तुझको ही दूंगा। हर एक बहुत ही शुभ दिन प्रकट की जा रही स्टूडियो से यू आर की पूरी टीम की ओर से। आप हमें यहां से भी सुन रहे हैं। स्टे ट्यून्ड।

बने रहिए उजाला रेडियो पर, म्यूजिक बोलता रहेगा आपके घरों में, आपके मोटरकार में या जहां पर भी आप हैं।

0: ये है उजाला रेडियो, यहां म्यूजिक कभी नहीं रुकता है, नहीं नोइट नॉन स्टॉप 24 घंटा लगातार तोर खाती है।
1: पत्ता टूटे डार से कि ले गए पवन उड़ाए, यारी बिछुड़े यार से ये दुख हमसे सहा न जाए।

उजाला रेडियो पर ये सॉन्ग अभी अभी खत्म हुआ है और उजाला रेडियो के जरिए अगर आपको जो भी कामकाज दिलाना है स्टूडियो मेल ना info@ujala.net

सुन वालों, ये उजाला रेडियो है और उजाला रेडियो के जरिए प्रोग्राम में हम नाम सुनाने को जा रहे हैं आंस्टांड ज़्यादा 29 एंड ज़ोंडर 30 अगस्त को जबरदस्त हंगामेदार फेस्टिवल होने वाला है ब्राज़ा फेस्ट इंडोर समर एडिशन इंडोर। हाँ तो मोइस सुन रहे हैं भीतर जिया इवेंट सेंटर देन हाग में आप सुनने को जा रहे हैं नाम। इस बार प्रोग्राम में हम ला रहे हैं अफीशा की आवाज़ में ओक अवेजक और ब्राज़ा फेस्ट।

बचाए मुझे रब्बा बचाए मुझे रब्बा रे बचाए मुझे रब्बा बचाए मुझे रब्बा बचाए मुझे।

ये है कॉफी चाय मिदक शो। आज है मंगलवार और मंगलवार 18 तारीख अगस्त का प्रोग्राम हम कॉफी चाय लेकर आए हैं।

0: दिन का।
1: ये है उजाला रेडियो का वही प्रोग्राम कॉफी चाय मिल्क शो जो शुरू किया जा रहा है आपके वास्ते। हम इंतजार कर रहे हैं, अभी थोड़ी देर में आनंद चंद्रिका सिंह का इंतजार कर रहे हैं। एंड दान बिगिनन वी नेचुरली विद गेज़ेलिगे लुख्तिगे ऑनडरवर्पें आज का समाचार, आने वाले दिनों के बारे में समाचार उजाला रेडियो पर जरूर आप सुनिए। उजाला कॉफी चाय मिदक शो कुछ देर में शुरू हुआ क्योंकि अफसोस के साथ बहुत सारे मृत्यु समाचार थे। आज के रात्रि के समय 7 बजे फिर सुन लेना उजाला रेडियो के जरिए मृत्यु समाचार। और हम आज ये प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं इस गाना के साथ, माइटी मुकेश की आवाज में। ये नाम हम आपको सुनाने को जा रहे हैं। माइटी मुकेश ये गाना गाए हैं इस फिल्म दीवार का, फिल्म है, फिल्म दीवार का नगमा है। धर्मेंद्रा और शर्मिला टैगोर, धर्मेंद्रा एंड शर्मिला टैगोर इस फिल्म में काम किए हैं। और ये गनवा इतना मोह लगे हमें, इतना मोह लगे, तनी मोह से गनवा सुनिए, ध्यान से सुनिए ये गनवा।

दिनों के बात है, उन दिनों के उन जमाने की बात है जब हम खेलते थे। ये सब बातें भूलना नहीं चाहिए।

और जाते जाते वक्त हम ये गाना फिर से चला रहे हैं. दिन नंबर ही में मैंने में बखोना एन ही में खाई दान एंड कॉफी चाय मिदा शो आज के लिए. मौज रहिए, एन हेले फाइने दाग. फिर मिलेंगे आपसे. मॉर्गन सैन वी द वेयर.

खुशी के साथ गमी है, पैदाइश के साथ मौत। उजाला रेडियो का प्रोग्राम में मृत्यु समाचार आप सुनिए। आम्स्टर्डम से समस्त परिवार हीरा लाल बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए बीफे को 87 साल के आयु में जीफन तख्त यार और पत्नी श्रीमती मरी हीरालाल उदयराम का पति लड़कन जूलियन और परिवार, ग्लेन और परिवार, नलिनी और परिवार, इरेन और परिवार, हैंक और परिवार, जिम और परिवार, शारदा और परिवार, जॉय और परिवार, योसेफ और परिवार, जेरी और परिवार, शर्मिला और परिवार और स्वर्गीय जॉन और परिवार के पिता आम्स्टर्डम का रहने वाला श्रीमान योसेफ चंद्रभान हीरालाल की मृत्यु आम्स्टर्डम में हो गई है। भान के नाम से लोग पहचानते और पुकारते थे। सूरीनाम में पहले सिदोरे जो वैख देसा लीली दौरप का रहने वाला था। आम्स्टर्डम से समस्त परिवार हीरालाल बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए बीफे को 87 साल की आयु में जीफन तख्त यार और पत्नी श्रीमती मारी हीरालाल उदयराम का पति लड़कन जूलियन और परिवार, ग्लेन और परिवार, नलिनी और परिवार, इरेन और परिवार, हैंक और परिवार, जिम और परिवार, शारदा और परिवार, जॉय और परिवार, योसेफ और परिवार, जेरी और परिवार, शर्मिला और स्वर्गीय जॉन और परिवार के पिता आम्स्टर्डम का रहने वाला श्रीमान योसेफ चंद्रभान हीरालाल के मृत्यु आम्स्टर्डम में हो गई है। इन्हें लोग भान के नाम से पहचानते और पुकारते थे। सूरीनाम में पहले लेली दौरप देसा सीधो रेजो वह का रहने वाला था। अर्थी से विदाई लेने की मौका है आने वाले बुध के रात में 7 बजे से 8 बजे तक वुंसदाख आफंत फन जी फन तौत अख्तूर ओला जोयत के मुर्दालय फ्रेतरूस के स्रात 91 आम्स्टर्डम जोयत में और अर्थी के दाह क्रिया आने वाले बीफे के दिन में 4 बजे दोंदर दखांस्तांद फिर यूर किए जाएंगे। वैस्खार्द क्रिमाटोरियम ओक मेरवैग 275 आम्स्टर्डम उस दौरप में निवास स्थान पर बैठक नहीं किए जाते हैं। और जानकारी के लिए तार का नंबर है 06-28-41-91-71. सुनने वालों से निवेदन है सूचना को और आगे तक पहुंचा देने के लिए उजाला रेडियो समस्त परिवार हीरालाल के दुख में शामिल है।

और मृत्यु समाचार प्रोग्राम में आप सुनिए हौतन से परिवार महादेव मिसिर बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए बुध को 72 साल के आयु में त्वेयन जीवन तखियार औत पत्नी एल्फी का पति लड़कन किशन विकास अमरेश और करिश्मा महादेव मिसिर के पिता मीरांदा लिंसे शकीता और राम के ससुर जायदा जनायरो रोशन और नीलन के आजा हौतन का रहने वाला श्रीमान चंद्रदत्त महादेव मिसिर की मृत्यु निवखेन के सेंट एंटोनियस हॉस्पिटल में हो गई है। हौतन से परिवार महादेव मिसिर बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए बीफे को 72 साल की आयु में त्वेयन सीफन तखियार औत पत्नी एल्फी का पति लड़कन किशन विकास अमरेश और करिश्मा के पिता मीरांदा लिंसे शकीता और राम के ससुर जायदा जनायरो रोशन और नीलन के आजा हौतन का रहने वाला श्रीमान चंद्रदत्त महादेव मिसिर के मृत्यु निवखेन के सेंट एंटोनियस चिकन हाउस में हो गई है। अर्थी से विदाई लेने के मौका है कल बुध के रात में 6 बजे से 7 बजे तक एटवर्ड सेंट्रम डालवेक के मुर्दालय फ्लोरिडा द्वीप नंबर 7 उत्तराखंड ओवरफेक्ट में और अर्थी के दाह क्रिया आने वाले शुक्रवार दिन में 4 बजे से फ्रेदखांस्तांद फिर किए जाएंगे डालवेक क्रीमाटोरियम फ्लोरिडा द्वीप नंबर 7 उत्तराखंड ओवरफेक्ट में। सुनने वालों से निवेदन है सूचना को और आगे तक पहुंचा देने के लिए उजाला रेडियो के साथ आखिरी सफर ऐतफार्त फुरजोरखिंग समस्त परिवार महादेव मिसिर के दुख में शामिल।

0: शेष हुआ।
1: उजाला रेडियो का प्रोग्राम में और मृत्यु समाचार को आप सुनिए। अम्स्टर्डम से परिवार भोला बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए शनिचर को 87 साल के आयु में ज़ेफ़रन तख्तख यार और पत्नी श्रीमती बेत्सी भोला का पति लड़कन एरविन सुदेश मीला और सुचित्र के पिता रोशिला नॉर्मा स्टेफन और केनेथ के ससुर, सात लड़कन के नाना और आजा और चार लड़कन के परनाना और पर आजा अम्स्टर्डम ज़ुइटोस वोन ग्रुप आनंद ज्योति का रहने वाला श्रीमान आंद्रे भोला के मृत्यु अम्स्टर्डम में हो गई है। पारामारिबो में कॉर्नेलिया स्ट्रैट का रहने वाला था। अम्स्टर्डम से परिवार लड़कन भोला बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए शनिचर को 87 साल की आयु में ज़ेफ़रन तख्तख यार और पत्नी श्रीमती बेत्सी भोला का पति लड़कन एरविन सुदेश मीला और सुचित्रा के पिता रोशिला नॉर्मा स्टेफन और केनेथ के ससुर, सात लड़कन के नाना और आजा और चार लड़कन के परनाना और पर आजा अम्स्टर्डम ज़ुइटोस वोन ग्रुप आनंद ज्योति का रहने वाला श्रीमान आंद्रे भोला की मृत्यु अम्स्टर्डम में हो गई है। पहले पारामारिबो कॉर्नेलिया स्ट्रैट का रहने वाला था। अर्थी से विदाई लेने के मौका है आने वाले शुक्रवार के रात में 7:15 से 7:15 तक। फ्रेडाफन Van kwart over zeven tot kwart over acht. Westgaarde crematorium ook meer weg. Dosau Pachatter Amsterdam Oostdorp mee. Aur arti ke dahkriya. Aane wale sanichar ke din mein 1:00 se. Zaterdag aanstaande. 1:00 kie jayenge. Westgaarde crematorium ook meer weg. 275 Amsterdam Oostdorp mee. सुनने वालों से निवेदन है सूचना को और आगे तक पहुंचा देने के लिए उजाला रेडियो समस्त परिवार भोला के दुख में शामिल है।

और सुनने वालों, यहीं से शोक प्रोग्राम यादें आप सुनेंगे। गीत इसमें होंगे किशोर कुमार की आवाज में और ये पेश है हौतन के रहने वाले परिवार महादेव मिसीर। पत्नी श्रीमती अल्फी के तरफ से स्वर्गीय पति लड़कन किशन, विकास, अमरेश और करिश्मा महादेव मिसीर के तरफ से स्वर्गीय पिता मिरांडा, क्लिंसे, शकिता और राम के तरफ से स्वर्गीय ससुर जायदा, जनायरो रोशन और नीलन के तरफ से स्वर्गीय आजा, स्वर्गीय श्री चंद्र दत्त महादेव मिसीर के याद में 72 साल की आयु में इनकर मृत्यु जो बीते हुए बीफे को हो गई है, तो इन्हीं की याद में ये अगला गीत प्रोग्राम में पेश है।

0: कोई सहारा ना रहा। किशोर कुमार जी की आवाज में गीत को आप सुने और ये पेश की गई है हौतन के रहने वाले परिवार महादेव मिसिर, श्रीमती पत्नी कहिए श्रीमती अल्फी के तरफ से स्वर्गीय पति, लड़कन किशन विकास अमरेश और करिश्मा की तरफ से स्वर्गीय पिता, मिरांडा लिंसे शकीता और राम के तरफ से स्वर्गीय ससुर, जायदा जनायरो रोशन और नीलन के तरफ से स्वर्गीय आजा, स्वर्गीय श्री चंद्रदत्त महादेव मिसिर की याद में 72 साल की आयु में मृत्यु हो गई है इनकर। तो इन्हीं की याद में गीत पेश की गई है और यहीं तक आप सुने आज का प्रोग्राम या सोख प्रोग्राम यादें उजाला रेडियो है ये।
1: You are. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

उजाला रेडियो पर आप गीत को सुने, फिल्म का नाम दिल क्या करे। अगला गीत जो प्रोग्राम में होंगे सुनने वालों, पेश है आदिनाथ मंगेशकर एंड ज्योत्सना हर्दिकर, इन लोगों की आवाजों में। इन्फॉर्मेशन जानकारी के लिए उजाला.nl आप जरूर देखें।

दिल खिले और जीने को मुझे क्या चाहिए। फिल्म क्रिमिनल का गीत फिर से सजाइए और गाए गए उजाला रेडियो पर आप सुने।

live vanuit de Hoofdstad. Groeien met je business of next level gaan? Ujala Radio brengt je daar. Mail naar info@ujala.nl en ontdek de mogelijkheden. अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां हैं, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश, 15 आवाजें फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो, स्टूडियो ईमेल नार info@ujala.nl, info@ujala.nl, 15 आवाजें फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो।

ये उजाला रेडियो है और इसी के साथ आरंभ किया जा रहा है एक और प्रोग्राम दर्द दिल। प्रोग्राम दर्द दिल दर्द भरी गीतों के साथ बनाया जा रहा है उजाला रेडियो पर आप सभी सुनने वालों के लिए, उन गीतों के साथ जिन गीतों को सुनकर के कभी तो दिल को सुकून मिलता है और कभी कभी दिल का दर्द जो है और उभर जाता है। कुछ भी हो कैसा भी हो प्रोग्राम तो आप ही के लिए हम बना रहे हैं उसी उम्मीद के साथ कि आप सुनेंगे और पसंद भी करेंगे। तो चलिए प्रोग्राम में आज पहला गीत जो आप सुनेंगे तो होंगे लता जी एंड किशोर कुमार की आवाजों में।

फिल्म थोड़ी सी बेवफाई के टाइटल सॉन्ग अभी आप सुने लता जी एंड किशोर कुमार से। फिल्म थोड़ी सी बेवफाई के टाइटल सॉन्ग म्यूजिक कंपोजर खयाम 1980 के फिल्म में उन दिनों काम किए थे शबना आजमी के साथ राजेश खन्ना एंड पद्मिनी कोल्हापुरी।

पुकारे मेरा प्यार मोहम्मद रफी साहब की आवाज। फिल्म नील कमल 1968 नीखंतिन अख्तन जस्तख की फिल्म नील कमल में उन दिनों काम किए वहीदा रहमान, राजकुमार, मनोज कुमार, ललिता पावर और म्यूजिक कंपोजर संगीतकार थे रवि। उजाला रेडियो है, ये प्रोग्राम का नाम है दर्द दिल। और अगला गीत।

दीवानों से ये मत पूछो कि दीवानों पर क्या गुजरी है। मुकेश जी की आवाज, कल्याण जी, आनंद जी के साज और संगीत पर फिल्म उपकार का गीत। 1967 निखंतिन ज़ीफनन ज़स्तख के फिल्म उपकार में उन दिनों काम किए हैं मनोज कुमार के साथ आशा परेख जी एंड प्रेम चोपड़ा।

नसीब में जिसको जो लिखा था वो तेरी महफिल में काम आया, किशोर कुमार की आवाज़ में आप सुने और रवि के साज और संगीत पर, हाँ रवि के साज और संगीत पर 1966 निकोंतिन जैसन जैस्तख की फिल्म दो बदन से निकाला हुआ और इस फिल्म में उन दिनों काम किए हैं मनोज कुमार के साथ आशा पारेख, प्राण जी और सिमी गरेवल। ये उजाला रेडियो है और प्रोग्राम जो आप सुन रहे हैं नाम है दर्द दिल दर्द भरी गीतों के साथ में।

तेरी दुनिया से होके मजबूर मैं बहुत दूर चला। किशोर कुमार की आवाज, फिल्म का नाम पवित्र पापी। पवित्र पापी किशोर कुमार की आवाज और म्यूजिक कंपोजर प्रेम धवन। फिल्म को बनाए गए 1970 में नेखंतिन जीफन तक में, और फिल्म में काम किए बलराज साहनी के साथ तनुजा एंड नीतू सिंह।

कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया। मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में आप सुने जयदेव, म्यूजिक कंपोजर 1961 नीखंतिन ईनन जस्तर की फिल्म हम दोनों, और काम किए इस फिल्म में देव आनंद के साथ में नंदा एंड साधना जी। उजाला रेडियो है ये।

दो दिल टूटे और दो दिल हारे। लता जी की आवाज में गीत को आप सुने फिल्म हीर रांझा से निकाला हुआ और म्यूजिक कंपोजर मदन मोहन के साज और संगीत पर। फिल्म को बनाई गई 1970 में नई खंतीन जीफन तक में और इस फिल्म में काम किए प्रिया राजवंश और राजकुमार। उजाला रेडियो है, प्रोग्राम दर्द दिल दर्द भरी गीतों के साथ पेश है।

ये है कॉफी चाय मेरा शो। आज है मंगलवार और मंगलवार 18 तारीख अगस्त का प्रोग्राम हम कॉफी चाय लेकर आए हैं।

0: दिन का।
1: ये है उजाला रेडियो का वही प्रोग्राम कॉफी चाय मेरा शो जो शुरू किया जा रहा है आपके वास्ते। हम इंतजार करें अभी थोड़ी देर में आनंद चंद्रिका सिंह का इंतजार कर रहे हैं एंड दान बिगिनिंग वी नेचुरली विद gezellige luchtige onderwerpen आज का समाचार आने वाली दिनों के बारे में समाचार उजाला रेडियो पर जरूर आप सुनना। उजाला कॉफी चाय मिदा शो कुछ देर में शुरू हुआ क्योंकि अफसोस के साथ बहुत सारे मृत्यु समाचार थे आज के रात्रि के समय 7 बजे फिर सुन लेना उजाला रेडियो के जरिए मृत्यु समाचार। और हम आज ये प्रोग्राम शुरू करें हैं इस गाना के साथ माइटी मुकेश की आवाज में। ये नाम हम आपको सुनाने को जा रहे हैं। माइटी मुकेश ये गाना गाए हैं इस फिल्म दीवार का फिल्म है फिल्म दीवार का नामा है धर्मेंद्रा और शर्मिला टैगोर धर्मेंद्रा एंड शर्मिला टैगोर इस फिल्म में काम किए हैं। और ये गनवा इतना मोई लगे हमें इतना मोई लगे तनी मोई से गनवा सुनिए ध्यान से सुनिए ये गनवा।

के बातें, उन दिनों के, उन जमाने की बातें जब हम खेलते थे, ये सब बातें भूलना नहीं चाहिए।

और जाते जाते वक्त हम ये गाना फिर से चला रहे हैं. दिन नंबर ही में मैंने में बखोना एंड ही में खाई दान एंड कॉफी चाय मिडा शो आज के लिए. मौज रहिए, एन हेले फाइन डे. फिर मिलेंगे आपसे मॉर्गन. सेंड द वेयर.

याद है तू, बाप हूँ तेरा मगर तुझको खिला सकता नहीं, दोनों हाथों से कभी